0: पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क, गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि, गैंडाकोट 5, मोबाइल 98612204437।
1: अहिले साँझको 7 बज्यो।

శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ మౌలకాళిక దేవ్యై నమః. విదిదామ సమప్రభా మృగవదే స్కందస్థితామీశణాం కన్యాభి కర్వాలకేట విలసద్ధస్థవిరా సేవితాం హస్తే సగరగదా శిఖేత విశకాం చాపం గుణం తర్జనీం విభ్రాణామనలాతికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే. देवी भगवती मौलकालिका का चरण में हार्दिक नमन. तपाईं को अंतरदिल में विद्यमान आत्मस्वरूपी परमात्मा नमस्कार. मध्य नेपाल के उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम आराधना में तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. म कृष्णमणि प्रविधि संयोजन मित्र राजेन्द्र का साथ में आज को यह शुभ दिवसाई में तपाईं हामी यति यात्रा गरिरहेका छौं. धार्मिक सेवा समिति मौलकालिका मंदिर को सहयात्रा एवं सहयोग में संचालित इस कार्यक्रम यहाँले प्रत्येक दिन यो शुभ बिहानको 5 बजेदेखि सुन्दै आउनुभएको छ. आउनुहोस् कार्यक्रमको श्री गणेश गरौँ. आजको पञ्चाङ्गसँग सम्बद्ध जानकारीबाट आज मिति 2083 साल ज्येष्ठ 3 गते आइतबार, तदनुसार मे 17 तारिक सन् 2026, अहिले अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अर्थात् पुरुषोत्तम मास मलमासको पहिलो दिन आज प्रतिपदा तिथि रहेको छ 46:10 जसको अवधि हुनेछ रात्रिको 11:44 साथै कृतिका नक्षत्र रहेको छ 27:30 यसको अवधि भने अपराह्नको 4:16 हुनेछ. साथै शोभन योग रहेको छ. करणमा किंस्तुग्न करण रहेको छ. यसै गरी बभक करण छ. आनन्द आदि योगमा धूम्र योग छ. वृष राशिमा चन्द्रमाको अवस्थिति अहोरात्र नै रहेको छ. दिनमान 33:44 रहेको छ. सूर्योदय बिहान 5:16 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ. आज अधिक मास प्राप्त